जो बख्शिश करना। कोशिश करिए आप इस जड़ा ये प्रोग्राम बनाया जा रहा ये अपना सहयोग बख्शीए ता कि आने वाली जनरेशन वास्ते असी कुछ नवी दे समय के मुताबिक नवा गुरद्वारा जड़ा वो आप आने वाली संगत दे सकी। आप जी ने बेनती है जरूर तिल फुल भेटावान जरूर आप जी ने ये जरूर भेटा पानी ता कि एक एक बूंद के नाल सागर भर जाता तो एक एक डालर की कीमत जी आने वाली संगत जो श्रद्धा नाल आप दे नाल नमस्कार करनगियां। गुरु कृपा करे चढ़दियां कलावां सब नूं सवाओ भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह दे जथे पासो सर्व करिए कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राखो लाज मुरार, दंडौत बंदनयन कबार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी फरीदा कोठे तुकण के तड़ा, पेर नींदड़ी निवार, जो देह लदे गाण में गए बिलाड़ बिलाड़।

वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मलक होई, गुण निदान भगतन को वर्तन विरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, ज्ञान की सन पया सुख पाइया, बहुत दुख न होई रहाओ, बड़भागी सात संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूड़ नानक दास बादशाह, जिन हर नाम हृदय परोई। बड़भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूड़ नानक दास बादशाह, जिन हर नाम हृदय परोई। परम सन्मान योग सतगुरु दाता जी दे चरणों दे पोहरे बनके जिन्हिया भी संगतां समाधियां लाके बैठिया ने, आओ सब तो पहले अपनी रसना नूं करिए पवित्र। साड़ियां ते अपनियां हाजरियां सतगुरु दाता जी दे चरणों ते लवाउण दा करिए जतन। एक बार सारियां संगतां रल मिल के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े तो पहले कौम के महान विद्वान आप जी दी नल बाबा सिख फरीद जी, और उन्होंने श्लोकों के अर्थ और गुरमत कथा और गुरमत विचार की सांझ करके गए नहीं, पर गुरु के प्यारे बाबा फरीद जी की कहते नहीं कि फरीदा जिनी कमी ना है गुण ते कमड़े वसार। तेनू जिंदगी च पता कि जेड़े कमां च कोई गौणी है नहीं, वह कमां नू छड़ दे। कह फरीदा जिनी कमी ना है गुण ते कमड़े वसार, मत सरबिंदा थी वही साई दे दरबार। कह तेनू परमात्मा दे दरबार ते आउंदे आ किते सिर ना झुकाउणा पै जाए। क्यों? क्योंकि इहो जे कम छड़ दे। हुण बंदे दी आदत किहो जी आ, क्योंकि और बंदा हथों च दीवा फड़ के तुरिया जांदा है, पर गुरु के प्यारे खूबी छाल भी मार दिंदा है। अज आम तौर ते आदत पई होई आ ते भगत कबीर जी कहिंदे ने, कबीरा दारी असल मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और मेरे दुनिया ते है कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या अलग है मेरा। दाता जे तेनू सब कुछ दे देता तो मेरा तो कुछ भी नहीं ना। दारी असल क्योंकि गुरबाणी साड़ी गुरु के प्यारे आत्मा ही, हुण आत्मा नूं टुंबण वास्ते सानू गुरबाणी पढ़नी लाजमी है। आ एक पंजाबी का मुहावरा है कि तपो राज ते राजो नरक। यह गल भावें सीधी साधी है पर इहदे अर्थ बड़े डूंघे नहीं। कह जुने दुनिया से तप किया और राजगद्दियां दे मालक बन गए, क्योंकि कीड़ा थप दे पातशाही लश्कर करे सवाह। और जिन्होंने तप किया और राजगद्दियां दे मालक बन गए, पर जिन्होंने राजगद्दी ते बह के जुल्म किया और नरकां दे भागी बनी। क्योंकि गुरु कलगी वाले पातशाह हुण आनंदपुर साहब की धरती उत्ते नारा लाउंदे नहीं, आओ भारत के लोग क्योंकि मानस की याद सब एक पहचानबो। इतने एको परमात्मा के नाम से आप इंसान ना आओ कतरे होवो, पर यह धरती से आवो कोई दुखिया है, कोई मजलूम है, कोई औरंगजेब बादशाह का सताया होया, वो इस धरती से आके पुकार कर सकता है। पर गुरु के प्यार को बहादुर शाह यह पहला ना सी मुअज्जम, कहिंदे ने मुझ में अपने उस्ताद नूं जाके कहिंदा है, कहिंदा उस्ताद जी मेरे बापू ने आखिया कि तैनूं कुछ दिनों के अंदर मुसलमान बनाया जाएगा। यह भाई नंद लाल नूं जाके कहिंदा है, और भाई नंद लाल नूं औरंगजेब का पुत्र कहिंदा है कि मेरे बापू का हुक्म हो गया है कि कुछ दिनों बाद तैनूं मुसलमान बना लिया जाएगा। तो भाई नंद लाल जी कहिंदे, बेटा तू कित्थों सुनिया? कहिंदा दारिया सिंह मेरे अब्बा जी गल्लां करदे सन, वो तुहाडी सोभा भी करदे नहीं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ

मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानी की हर आस पजाबो, हर दर्शन शांत शरीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पजावो, हर दर्शन शांत शरीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारे हो, रहमत हुई है तुहाडे ते, तुसी गुरु घर दी हाजरियां भरियां ने, गुरु की गोद विच बह के गुरु की बख्शिश के पात्र बने जे। और अरदास भाई साहब के जत्थे का धन्यवाद जो इतिहास रंग करा रहे सी, अरदास हुई है पवित्र हुक्म नामे सगुर ने बख्शे जो आप श्रद्धा ना सरम किए। गुरु कृपा करे सब नू ऐसी बख्शिश हो जाए जिहड़ी बख्शिश अज सतगुरु ने साडे हुक्म नामे राही साडी झोली च पाई है। क्योंकि गुरमा प्यारो जे भोखा प्यास है ना, तो फिर मन नू दिल करदा चित करदा प्रशादा छकना दे जल शकल के मैं प्यास मेरी को बजा दे। इस तरह उस वाहिगुरु परमेश्वर अकाल पुरख प्यारे नू मिलने वास्ते मन विच तां गुठनी चाहीदी, प्रेम होना चाहीदा, प्रीत होनी चाहीदी है। जिन्ना चिर प्रीत नहीं ना बनती उन्ना चिर गल नहीं बनती। अज सतगुरु ने बड़ी कृपा करके देखो बाणी कोई औखी नहीं गुरु प्यारे, बाणी नाल चित जोड़न की लोड़ है। जे मन जुड़ जाए ना पातशाह कि दे ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित एकाग्रता दे नाल। जदों तो एकाग्रता दे नाल बाणी पढ़ेगा तेरी गुरम प्यारे मन की अवस्था ही ऐसी बन जानी है कि तू बाणी नूं टुटना ही नहीं। ज्यों ज्यों पढ़ेगा ना त्यों तो तेरे ते कृपा आनी, ये बाणी की ऐसी बख्शिश है विलखणता गुरम प्यारे। जिवें मैं अगे भी एक दिन उदाहरण दित्ती सी कि मच्छी समुद्र च तरदी है पर समुद्र च रस्ता कोई नहीं हुंदा, पर जिधर नूं मूँह कर देना तो पानी नूं रस्ता दे देंदा। जदों तुसीं मुख गुरु वल कर लिया ना, गुरु ने अपने आप ही गुरमो प्यारो बख्शिशां कर देनियां। जिवें आ भाई साहब तुरे आउंदे ने ते बत्तियां सामने आउण ना, लाइट सामने हो ते परछावां पिछे आउंदा, पिछे आउंदा। ते जे गुरमो प्यारो जिहड़ी पिट होवे ना लाइट वल तो परछावां अगे जांदा, बंदा कहे ना फड़ लां परछावें नूं फड़ नहीं सकदा। इस तरह जो तुहाडा मुख गुरु वल होया ना तो गुरु ने रहमतां गुरमो प्यारो तुहाडी झोली च पा देनी आ। गुरु किसे दा कीता रखदा नहीं। महाराज के चरण शरण गुरु एक पैंडा चाल चाल गुरु सतगुरु ऊट पैंडा अगे हो ले तो तुरत सही तू ए आ तो सही, पर गवा करना असं कई बार पिठ दे के तुरते हैं इतों। मैं कहना वह बाबा पिठ की नहीं लोड़, बाबा तो चार सफेरे जिथे मर्जी है वो तो हर एक थान है, पर जी पिठ असी देती हल तो वेखो ना बदावे दलां तो अं करते हैं। फिर सिखा ने बदावा देता भी उन्होंने पड़वा लिया बदावा, पर असं भी कभी कोशिश करते भी अं जो बदावा लिख के दिता असं भी पड़वा लीए। वो तो आ गए सी, वो तो माइया ने अगों कहा, अज तो माइया कहदियाँ कोई नहीं पुत कितने के सामने आ चल जगर रगा के आ तो आखो सतनाम। उदों तो माइया ने कहा सी ना जदों आ गए कितों आए जी, आ गए जी की हाल साढ़े गुरु का, कह लगे अं तो बदावा दे के आ गए। तो बीबिया ने अंदर सूट लिया, चुद्दियाँ लिया, चूड़ियाँ लिया, क्या पाओ तुम बैठो असी जाने। अज कोई हो यहोजा गल करने वाला भी जदों असी जाने तो सानू कोई रोके भी भाई आ कम ना कर, अज तो वह काम ही नहीं रह गया। तो मालिक कृपा करे गुरमुख प्यारो मैं बेनती करा अंदर प्रेम ते प्रीत पैदा करो। जिदन ताडे अंदर प्रीत होगी भुख होगी ना, जिवें आपां भज्जे आउने ना भी चलो गुरुद्वारे लंगर छकी है, कभी इधरले पास भी भुख रख्या करो भी इतने भी आत्मा का लंगर छकी है। आखो सतनाम से वह तो मिले मिले वो कोई गल नहीं, भुख के नाल शरीर खत बंदा गुरमुख प्यारो लंगर ना छको प्रशादा ना छके शरीर खत्म हो जाता। तो मुर्दे नूं घर कोई रखता भावें अपना ही होवे, जिन्ना मर्जी अपना धी होवे पुत्र होवे दौं जवान बुढ़ा होवे, कदी किसी ने मुर्दे नूं घर नहीं रखिया। क्योंकि वह मर गया खत्म हो गई शरीर अड तो बगैर,
ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ

ठाकुर चा सिमरां तू ताहीं कर कृपा सर्ब प्रतपालक प्रभ कौ सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही को प्रव्याही नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही को प्रव्याही नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी।

भगत बेणी जियो की पहरियां कह कर गावना। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, हरे नर गर्भ कुंडल चभ्यास्त, उर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद माद ना अहनिस, एक अज्ञान सो नांगा। ते दिन संभल कष्ट महा दुख, अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तो नर हर मनो बिसारिया। फिर पछतावे।

बाल बिनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोह ब्यापे, रास मिस मेद अमृत बेख चाखी, तो पंच प्रगट संतापे। जाप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना राध्या, उछलिया काम काल मत लागी, तो आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज परत्रे मुख जो हैं, सारे अपसर ना पछाणिया, उनमत काम महा बिक भूले, पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख एह मन गर्बिया, राम हृदय ते खोया। अवर मरत माया मन तोले, तो पग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पाताल की बाणी, लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी। ताते बिखे पई मत पावस, काया कमल कुमलाना, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाचे पछताना। निकुटी दे देख तोने उपजय, मान करत ने बूझय, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझय। थाका तेज उड्डया मन पंखी, कारिया करना सुखाई। बेणी कह सुनो रे भगतो, मरण मुक्त किन पाई श्री राग। तोही मोही मोही तोही, अंतर कैसा, कनक कटिक चाल तरंग जैसा। जौ पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता रहा। तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी, प्रभ ते जान जानी जय जानते स्वामी। शरीर राधा मोको विचार देहु, रविदास साम दाल समझावे को।

गुर दर्शन ताए, बिलब करे चात्र की न्याय, तिरखा ना उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हाओ कोली जियो कोल कमाई, गुर दर्शन संत पे

जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, दयाल दमोदर गुरमुख पाइये, होर त किते न भांति जियो। निरहारी केशव निर्वैरा, कोट जना के पूजे पैरा, गुरमुख हृदय जाके हर हर, सोई भगते कांति जियो। अमोग दर्शन बेअंत अपारा, वड समरथ सदा दातारा, गुरमुख नाम जपिए तित तरिए, गत नानक विरली जाति जियो। माज महला पंजवां।

ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्त सब किश तेरा पाणा, अगामे गोचर बेअंत अथाहा, तेरी कीमत कहन न जाए जीव। खाक संतन की दे प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेकत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा। दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समर्था, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हो पीड़ा, हर आप करे प्रतपाला जियो। बारक वांगी हो सब किश मंगा, दिन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हाँ बलिहारे सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जियो। माज महला पंजवा। लाल गोपाल दयाल रंगीले, गैर गंभीर बेअंत गोविंदे, ऊच यथा बेअंत स्वामी, सिमर सिमर हो जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले, निर्भो निर्वैर यथा अतोले, अकाल मूर्त अजो नि संपो, मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला, ऊच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र बतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तो त्याई, एस मत गुरु ते पाए, नानकी तर तू है ठाकुर, हर रंग पार परिमा जियो। माज महला पंजवा। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया, सफल दर्शन नेत्र पे खतरिया, धन मूर्त चसे पल घड़िया, धन सोए संजोगा जियो। उदम करत मान निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया, नाम निदान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो। अंतर बाहर तेरी बाणी, तुझे आप कथी तैं आप बखाने, गुर कहे आ सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो। अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया,

उठाजियो। जिन हार रस पाया सो तृप्ति अखाना, जिन हार साध पाया सो नाहि डुलाना, से प्राप्त हर हर नामा, जिस मस्तक पागी ठा जियो।

चार श्लोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की तुनी श्लोक।

बढ़िया अपने साजो अपने रचनाओ दोए कुदरत साजिए करा संठ उचाओ दाता करता आप तू तुस्ते वे करे पसाओ तू जाने सबसे दिला सह जिंद कवाओ करिया सन डिठो चाओ करिया सन डिठो चाओ।

तीर्थ नावै अर्चा पूजा अगरवास वैकार। जोगी सुनते हैं उन जेते अलख नाम करता।

शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: चरण कमल हृदय माहे समाए, तै पर में अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्ब प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, और आस बिडाणी लाही। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, और आस बिडाणी लाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर चुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सत्संगी जनों वट भागे हाँ, जिथे आप जिया ने शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन गुरु दर दे सवारिया पासों श्रवण कीते ने। सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण कीते हैं। गुरद्वारा साहिब विखे अज नगर जनेतपुरा दी संगत वालों, भाई सुखचैन सिंह परिवार वालों दूसरी अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग ऐतवार सवेरे 9:30 बजे पैणगे, उपरंत हफ्तावारी दीवान सजणगे। परिवारां ते नगर निवासियां वल्लों बेनती, आप जी ने दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। जिवें कि आप जी नूं पता है, गुरद्वारा साहिब दी नवीं इमारत दी रंभता करता करदिआं होइआं जो टक है उह 20 सितंबर दिन ऐतवार नूं लगणगे, जिस नूं मुख रखदिआं सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा श्री दरबार साहब अमृतसर वाले ते भाई गुरचरण सिंह जी अरदासीए इस विशेष मौके ते पहुंच रहे ने। भाई लखविंदर सिंह जी आने वाले मंगलवार तो जो है यानी कि 15 सितंबर तो रोजाना ही सवेर शाम के दीवाना विच आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे। भाई साहब जी दे शाम दे दीवाना दा समां 7:30 बजे तो लै के 8:30 बजे तक रहेगा, और आने वाली 20 तरीक तक आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। ते 20 सितंबर दिन ऐतवार दोपहर 12 बजे नवें स्थानां दा टक लाया जाएगा। सो आप संगतां ने हुम हुम आ के दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। आस है आप जी बेनती प्रवान करोगे। गुरबाणी संथ्या दी क्लास हर हफ्ते सोमवार तो वीरवार 7 बजे तो 8 बजे तक लगती है। जिन्हां ने गुरबाणी संथ्या क्लास अटेंड करनी होवे वो अपना नाम ते नंबर नोट करवाउण दी कृपालता करनी जी। अमृत संचार इस एतवार नूं 13 सितंबर 9:30 बजे सवेरे होणगे। जिन्हां विलाखियां ने खंडे बाटे दी पौल छकनी होवे वो भी कृपा करके अपना नाम ते नंबर नोट करवाउण दी कृपालता करनी जी। श्रवण करदे हाँ पावन मुख वाक दी कथा, भाई गुरशरण सिंह जी होना पासों भुला चुका दिखेवा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु।

ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते उगण हमारे

गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बीचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़े रखीशर जोग जोग बेदां नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पयाले। गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठ सठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति जिनसी माया जिने उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई। सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई। जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्ना दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सन्मानयोग सत्संगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरुदेव दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु घर के रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। समा है लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब दी चल रही पावन बाणी दी कथा विचार दा। पावन शब्द जिस दा पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है, आओ इस शब्द दी विचार नूं आरंभण तों पहला दर घर दी मर्यादा नूं मुख रखदिआं फतेह दी सांझ पाईए जी। कोई रसना वांझी ना रहे, इक्के वारी कहण ते आखणा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस शब्द दा पाठ मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है, ये शब्द तुसी जपजी साहब की बाणी दे विच सोदर की पौड़ी के रूप में भी पढ़ते हो।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ 347 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।

0: ढाई के जी हो, हो, हो, हो। पर गुरु के प्यारे बाबा बिधि चंद जी मन दे घोड़े दड़ाउंदा अज लाहौर की धरती वाल किवें तुरिया जा रही है यह मन दियां सोचा की नहीं। यह चाहता है कि दाता कित कृपा करे मैं घोड़े दोनों ले आवां। पर गुरु के प्यारी सीत हाथ का गला पन्ना आप कल विचारांगे कि सारिया संगतां दा तहि दिलों धन्नवाद जिन्हिया भी संगत गुरु दरबार च बैठिया ने सत संगत कर रहे हो। सो अज की इनकी सेवा करो प्रवान एक बार सारिया संगतां रल मिल के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ये सन भाई राम सिंह जी रफ्तार होना का जत्था जवाब संगत न ढाडी वारा इतिहास द्वारा निहाल कर रहा सी सारी जथे उत्ते बड़ी सतगुरों की बख्शिश है। तो जथा सवेरे शाम गुरद्वारा साहब विखे हाजरियां भरदा है तो आप संगत को बेनती आप जी लाहे लैण की कोशिश करो। ये ही सात संगत जी एक दो जरूरी बेनती ने कि 20 तरीक दिन एतवार को तकरीबन 12 बजे नवा गुरद्वारा साहब की इमारत की जिहड़ी नींह पत्थर है वह रखा जाना है। तो आप संगत को सारे बेनती है कि पंजा प्यारियां की अगवाई दे विच नवा गुरद्वारा साहब जिहड़ा है वो उसारी होने जा रही है। तो आप जी ने उस समागम का हिस्सा बनना जी आप सारी संगत को सद्दा है तो असी आप तो संयोग की भी उम्मीद रखते हैं। ये नाल ही बेनती है 15 तरीक तो लैके 23 सितंबर तक हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई लखविंदर सिंह जी आप संगतां दे नाल पावन बाणी दे कीर्तन दी सांझ बनाउणगे। समा है हर रोज़ शाम नूं 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक दा। तो तकरीबन 15 तरीक तो लैके 23 तरीक तक निरंतर जिहड़े ने उह शाम दे दवाना विच 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर वाले तिन्हां दा जत्था आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण करावेगा। ऐतवार को उन्हों का समा 11 बजे तो लैके 11:45 तक होगा। तो आप संगत ने समय सिर गुरु घर में हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। नाल ही बेनती है जी कि 13 तरीक न दिन ऐतवार को जो हूँ ऐतवार आ रहा है अमृत संचार जिहड़ा है वो हो रहा है अमृत बलाखी सज्जन भैणा बीबिया जिन्हां ने खंडे बाटे की पौल लैनी हो केसी इशनान करके सवेरे 9 बजे गुरद्वारा साहब विखे पहुँचन की कृपालता करन। ऐतवार को संथिया की क्लास जिहड़ी है वह आरंभ हुई है गुरद्वारा साहब दे विच सोमवार तो लैके वीरवार तक शामी 7 बजे तो लैके 8 बजे तक गुरबाणी की संथिया क्लास हुंदी है। तो इहदे नाल ही साध संगत जी बेनती है कि इस दीवान हाल दे विच दीवान की समाप्ति है दूजे हाल विच जिहड़ा प्रोग्राम है वह लगातार चल रहा है श्री अखंड पाठ साहब सेवक परिवारों वालों नगर जनेतपुरा दीयां संगतां वालों आरंभ होए ने। तो आप संगत को बेनती है कड़ा प्रसाद की देख उपरंत गुरु के लंगर भी नगर निवासियों वालों तैयार ने आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाने। तो अगला जिहड़ा दीवान है वो 2 नंबर हाल दे विच चल रहा है आप जी उत्थे सज्जन की कृपालता करो। धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

तीन दुध ते बाहरी किता न आवै काम, जल बिन शाक मुलावती उपजै नाहीं दाम। हर नाना मिलिए साजन कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंतन प्रगटई भठ नगर से ग्राम। सर्ब शिंगार तंबोल रस सण देही सब खाम, प्रभ स्वामी कंत बिहूणिया मीत सजन सब जाम। नानकी बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल धाम।

असन प्रेमी माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हो तन कै लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाहीं जाए। जिनी चाखिया प्रेम रासे तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बेनती करें लेओ प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिला

दिल हच है मुख लेहु, अवर दवाजे दुनी के, झूठे अमल करे हमला पहला। जाहो नाही ता क्या अखां, के नाही क्या हुआ, कीता करना कया कथना, भरिया भर भर धुआं। आप न बुझा लोक बुझाई, ऐसा या गू हुआ। नानक अंधा होए कै दसे राह, सब समुहाई साथ है, अगै गया मोहे मोह पाहे, सो ऐसा आगू जापै। पौड़ी बाहा रुती सब तू, घड़ी मूरत विचारा, तू गणतै किन न पायो, सच्चे अलख अपारा। पढ़िया मूर्ख आखिए, जिस लब लोभ अहंकारा, नाउ पढ़िए नाउ बुझिए, गुरमति विचारा। गुरमति नाम धन खटिया, भगती भरी भंडारा, निर्मल नाम मन्या, दर सच्चे सच्यारा। जिसदा जियो प्राण है, अंतर ज्योति अपारा, सच्चा शाह एक तू, होर जगत वणजारा। श्लोक महला पहला।

सजाए रस कस टटर पईए तपै तै बिलाए पीसो फोग संभालीऐ तिचै अग जलाए। नानक मिठै पतरीऐ वेखो लोकां आए पौड़ी एक ना मरण ना चित आस कनेरिया मर मर जमै नित किसै न किरिया आपन रै मन चित कहन चंगेरिया जम राजै नित नित मन मुखीरिया मनमुख लून हराम क्या ना जानिया बद्धे करन सलाम खसम ना भाणिया सच मिले मुख नाम साहिब पावसी करसन तक सलाम लिखिया पावसी। श्लोक महला पहला। मच्छी तारू क्या करे पंकी क्या आकाश पत्थर पाड़ा क्या करे खुसरे क्या घर वास कुत्ते।